रोक लेंगे साहित्य लॉयड्रेगो अनी रोशन क्रास्ता संगीत विनिल वेगस गायले ले जावना साथ प्रजुत डेसा गीत चिंतनान एताई

लोकलिंगित, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जावना साथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।

लोकलिंगित साहित्य रोशन क्रास्तानी लॉयड रेगो संगीत विनिल वेगस गैलीले जमनसाथ प्रज्योत डीसा गीत उड़ी उड़ी